समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

दुरां विमर्दय विमर्दय ह्रीं क्षां क्षीं स्त्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जम्भय जम्भय दीपय दीपय मोचय मोचय हूं फट् जां वौषट् ऐं ह्रीं क्लीं रञ्जय रञ्जय संजय संजय गुंजय गुंजय बंधय बंधय ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे संकुच संचल त्रोट

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आप सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

विमर्दय विमर्दय ह्रीं क्षां क्षीं स्त्रीं जीवय जीवय त्रोटय त्रोटय जम्भय जम्भय दीपय दीपय मोचय मोचय हूं फट् जां वौषट् ऐं ह्रीं क्लीं रञ्जय रञ्जय संजय संजय गुंजय गुंजय बंधय बंधय ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे संकुच संचल त्रोटय त्रोटय म्लीं स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा म्लां म्लीं लूं मूल विस्तीर्णा कुञ्जिका स्तोत्रहेतवे अभक्तायन दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती विहीना कुञ्जिका देव्या यस्तु सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रुदितं यथा श्रीडामरतन्त्रे ईश्वर पार्वती संवादे कुञ्जिका स्तोत्रम्।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।